पोचे मा आमो सुटा ना ये नोश किस्ता आशो निपाइस्ता आशो न्यूएस्टी आशो आमो सुटा ना ये प्यो आश का पतने में आमो शो चे मा